0: सुन पाए। किसान सिंचाई करने उच्च गुणस्तरीय विभिन्न साइज र क्वालिटी को कृषि पाइप कुखुरा पाला किसान कुखुरा को खोर अनुसार को बलियो तथा भरपर्दो तिरपाल विभिन्न प्रकार का तिरपाल तैयार कर साथ ही उच्च स्तरीय ड्रम जर्किन डिब्बा हरेक प्रकार का प्लास्टिक का सामान को लगी
1: सम्पर्क श्री प्लास्टिक पाइप उद्योग श्रेष्ठ कम्प्लेक्स लीलाचोक नारायणगढ़ फोन नम्बर 0556 98 833 र 598 834।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।